उन्होंने जंगल के अंदर से एक नल बनाया है। अगर वो पानी का मुहान ही बंद कर देंगे तो ये लोग कितने दिन भूखे प्यासे लड़ेंगे।

Helumbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: ते निम कदे ब्लेवा भाई
1: आए
0: जोकर करे हनुम सिरी तिनु
1: दादे खाला दाला रोम
0: खा गईले शब समी
1: तिनी नुने से जाम लबदा जाएनु
0: क्या को नाना खाजी थेरी जोकर